0: テリングほぼ。ほぼशागरी कुष्ट का जहाल दिन लवे तेरी उम्मीद तेरा इंतजार मी लवे यकी अनिकस ननुट को फवा बे फुंगे तेरे फरात कावा का दकालाना अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: रीम कोबा की ने हाल
1: समझन
0: हम बराबर की कोलनी
1: मेरे आबे कल
0: अंबु अंबु मुसन दो मी तमात के सब दों अंबे हम वर बडो अंबे ता तिगे के हुरे तांबुगस
1: आ हुन
0: कितंग अमुगसुरे
1: फाहे
0: फास सांबुगस
1: आ
0: हुरी हा अमुग हे गाला फोती
1: आ
0: दोम वेस वेफा की न
1: तन वेस दन अबे
0: ए
1: मि कानी वेस दन अबे
0: हम गहु ग हुट्टे दोम वेफा हुट्टे नट्टा लंती कानी आ आदा मीरवाने रदो गहु एची बिंदलां के मेवा ताजा कों ए हुन हुरुमा ए ला रहा हम ए मुड़िन एहेन कहला दो रीम गहन आरा उलेन ता
1: आ गा किर कुरे दोस किरा नि नि
0: नुवेटुनी
1: आ
0: रुखन गेरे ते रीम
1: आ रुका बे सरंगे हे सरंगे बे हे सरंगे
0: हस्ता हा दहा कुल दाने रीम इंगे ती गहन आरम बिंग अंबे ते तिकनी
1: आ
0: आ तिरी गेफ वरा फश गनु हुरे
1: आ नु हुरे
0: आ मा बोडे ती दोगस Then tihuri ambe ki ne hada ni nu ke vena nu ri maka.
1: Dasta me na male ko mare.
0: Ah. En fas ka ho ga visare ambo ti ma gina ma ne ta do. Ah, rangalo rangalo den e gem tafatu tafat etti tajuri ba ko padari. Eh, ambu ga mi ma sara hada juice gira fani gira eh.
1: Ah, me juice gira la me.
0: Ke ku etti ala anika nga tajuri ba ta kolla balati ambu. Kitang ambu rim bini de emeche
1: nu fasang bini
0: fasang bu bini gahang arage
1: ah
0: rangal den te ambu ka gadi hinga lavadu hala ma kon kuja ka hasa kollani
1: samaya asida de
0: hendulu sho adoi hinta
1: ah adoi ye sena dimavie
0: ehenta okay ehma lava jahal dena varabada shukriya rim baki velana inge
1: ah okay bye

0: Still aggressive. Still angry. You love this image of yours, right?
1: Sorry, stop it.
2: अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए।
0: मैं ना तुम एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ।
2: क्यों जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो मैडम? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली पुंख दूंगा।
0: लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं। मोहब्बत में समझदारी की आदत होती है उन्हें। And I didn't know how to explain him that. हम ना शादी कर लेते जल्दी से। मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। जब वो लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना, तो वो चले जाते हैं।
2: मैंने कहा था मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा।

0: मुक्ति के पीछे भाग मत, अपने इश्क में इतना जल कि मुक्ति खुद तेरे पैरों में गिर के भीख मांगे कि स्वीकार करो मुझे।
1: फिल्म के लीड रोल तक फेनिगेंदी धनुषा कृति सेनन कला येलो प्रोडक्शन सा टी सीरीज गुड़गेंगुफेदी मे प्रोजेक्ट रश्मि कोंगे उलान कुरी दिहास तेविस वनाहरु के जून महु रांजनाय दिहा हर फुर्मा दिमाको मेया को कुरी के फिल्म के सपोर्टरों के मेदुगा बोडु इंतिजारें उफेदी फिल्म अंगो शाउगेरकं इंतिहां उफुलुनु नतीजा कवि सोनम कपूरा धनुष फेनिगेंदिया रांजना अनेक कावस ट्रेंड वांफेशुं रांजना हुआ में तेरे फदा लवतं अलुन ट्रेंड वांफेशी।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद, रिफ्का गार्ड, दिवे ही एफएम, दिवे ही नाइक, दिवे ही नाइक।
1: नमो दिया एक मेगाहर्ट्ज़, दिवे ही एफएम।